गुड मॉर्निंग, नमस्कार. सुप्रभात छत्रपती संभाजीनगर. तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM. एक्झॅक्टली आता 7:17 वेळ झालेली आहे आणि आज आहे वार मंगळवार. मंगळवार का दिन है और आज का दिन भी ना तो मंडे का ही जुड़वा भाई होता है. मंडे के दिन कैसा काम का वर्कलोड बढ़ता है और मंगळवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हाल होता है. तो बाकी तो बस इस हफ्ते हमें सर्वाइव करना है और अच्छे मूड के साथ सर्वाइव करना है और काम वक्त पर कंप्लीट करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अब कर. तो इसी हिसाब से जो आप कल के ऊपर काम छोड़ते हो ना, तो उसको आज मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में कोई दिक्कत ना आए. तो इसी सोच विचार स्विचार के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. अजून खूप काही गप्पा गोष्टी मज्जा मस्ती होणार आहे आपल्या शो मध्ये, पण थोड्या वेळानंतर. तोपर्यंत ऐकत राहा येणारी सुपर डुपर हिट गाणी विथ RJ अदनान इन द शो ऑल इज वेल.

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमटीएल 90.8 एफएम।
1: हर रोज हम फोन उठाते हैं, ऑर्डर डिलीवर ये नोटिफिकेशन आता है और बस दो सेकंड के लिए दरवाजा खोलते हैं, पर उस दरवाजे के बाहर जो खड़ा होता है उसकी भी एक कहानी होती है। एक डिलीवरी बॉय था अमन, सुबह 9 बजे घर से निकलता, रात 11 बजे तक गर्मी हो बारिश हो या ट्रैफिक, फोन पर बस एक लाइन ब्लिंक करती है, योर ऑर्डर इज अराइविंग सून। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड पर पानी, कपड़े पूरे भीगे हुए, पर ऐप में टाइम चल रहा था। अमन बाइक साइड में रोककर 10 सेकंड के लिए खुद से बोला, बस यार अब ये लास्ट ऑर्डर, फिर घर चला जाऊंगा। पर मिडिल क्लास घरों में लास्ट ऑर्डर कभी लास्ट नहीं होता। उसने पार्सल डिलीवर किया, दरवाजा एक छोटी सी लड़की ने खोला, पिज्जा देखकर वो खुश हो गई और अंदर भाग गई। अमन मुड़ने ही वाला था तब उस लड़की की मम्मी बाहर आई और बोली, भैया आप पूरे भीग गए हो, चाय पियोगे? सच बताओ उस दिन अमन को चाय से ज्यादा ये लाइन पसंद आई। वो 2 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ में चाय, आंखों में थोड़ी थकान और दिल में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि कभी कभी लोग पैसे से नहीं इज्जत से थकान उतार देते हैं। तो अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आए, सिर्फ पार्सल मत लीजिए, एक स्माइल भी दीजिए, उसे कम से कम पानी का तो पूछिए, क्योंकि उनके बैग में सिर्फ ऑर्डर नहीं होते, घर की जिम्मेदारियां भी होती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमटीएल 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है आज की मंगलवार वाली मॉर्निंग आपकी गुडी करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस मौके पर ना तो मैं आपको हर दिन एक गिफ्ट जीतने का मौका देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पहेलियों का जवाब देना है। तो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर, लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए, बताइए ये क्या चीज है। फिर से दोहराता हूँ कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर, लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए, बताइए क्या चीज है। तो इसका जवाब है नहीं नहीं, आप मुझे बताओगे, डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, या तो फिर व्हाट्सएप करना 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जो सबसे पहले और जल्दी जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलने वाला है। सो जल्दी करे, देर मत करे, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहे।

0: हम सभी की जिंदगी ऑल इज वेल है, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रेस आते हैं, तो वो दूर करने के लिए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल ऑन MGM 90.8 FM एंड मेंटल हेल्थ वेल, तो जिंदगी ऑल इज वेल में बात करने वाले हम डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम के साथ, जो कि HOD है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, तो उसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं?
1: हम देखिए तीन चीजों से पहचान सकते हैं। पहला है फिजिकल, कि जैसे लगातार सर दर्द होना या एसिडिटी रहना या गर्दन, कंधे, पेट में दर्द रहना, तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। थका हुआ महसूस करना, शरीर में भारीपन लगना, ये भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। दूसरा है देखिए हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स, जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, काम में मन नहीं लगना या ज्यादा नींद आना। जैसे कुछ लोग ऑफिस में आते ही उनको लगता है अरे बहुत नींद आ रही है। अब देखिए इसके भी दो कारण है, कि सच में उनकी नींद नहीं हुई है, क्योंकि शायद वो घर पे भी ऑफिस का काम लेके बैठे हों, और फिर दूसरा है कि ये स्ट्रेस का अर्ली साइन भी माना जा सकता है। और तीसरा है देखिए कॉग्निटिव, कि हमारा फोकस जो है वो कम होना, तो फोकस करने में दिक्कत आना और कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, फिर हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सब कॉग्निटिव चीजें हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस की अर्ली साइंस है।
0: तो आप में से भी ऐसा किसी को लग रहा है कि यार वो स्ट्रेस में है और उसके अंदर जो साइन अभी मैम ने बताए वैसे नजर आ रहे हो, तो भाई थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा और हेल्थ को वेल रखिएगा। बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए और जिंदगी में इतना स्ट्रेस मत बढ़ाइएगा कि आपकी हेल्थ खराब हो, क्योंकि हेल्थ वेल रहेगी तो सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा। स्टे ट्यून। ऑल इज वेल
2: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगेशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: क्या?
1: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी, NCT, छत्रपति संभाजी नगर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो आपका पसंदीदा शो ऑल इज वेल ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त ना तो हम आपकी महफिल सजाते हैं फरमाइशों के साथ, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज हमारे पास फरमाइश आई है प्रेम काले जी की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही खास बेहतरीन सा सदाबहार गाना फरमाइश में बताया है, जो पेश है फिल्म कर्ज का सुपरहिट गाना ओम शांति ओम। तो

0: व्हाट्सएप नंबर पर 9359300080। बिलाल फरमाइश पर ये गाना एंजॉय कीजिए एंड सुनते रहिए।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी

एक ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RG अदनान आपके साथ है। एंड वो कॉन्टेक्ट नंबर पुलिस का नहीं है भाई। देखो, पुलिस का कॉन्टेक्ट नंबर हम सभी को पता है क्या है। एक और कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपको याद रखना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि फिलहाल क्राइम करने का तरीका थोड़ा बदल चुका है और नया क्राइम सामने आया है, दैट्स कॉल्ड साइबर क्राइम। एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 से लेकर मई 2026 तक अपने पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम के केसेज रजिस्टर हो चुके हैं और इसमें से 2,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है जिन्होंने साइबर फ्रॉड किया है, साइबर क्राइम किया है। ऐसे केसेस ना आज अपने शहर में भी बहुत सारे जगह पर हो रहे हैं। किसी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया, किसी के साथ 4 लाख का फ्रॉड हो गया, किसी का पूरा डेटा गायब हो गया, तो किसी का कंप्यूटर या अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका है। अगर ऐसे कुछ चीजें आपके साथ हो रही हो, ऑनलाइन अरेस्ट कर रहा हो या ऑनलाइन धमकी दे रहा हो, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो 1930 इस कॉन्टेक्ट नंबर पर। ये है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके हेल्प मांग सकते हो और आपकी कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो। नंबर याद रखिएगा 1930, 19 और 30, सिंपल तरीके का नंबर है, याद रखिए। इसी के साथ अगर कोई कंप्लेंट आपको दर्ज करना है तो आप विजिट कर सकते हो www.cybercrime.government.in इस वेबसाइट पर। और साइबर पुलिस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें। सबसे ज्यादा केसेस इसी वजह से होते हैं, एक लिंक आपके मोबाइल पर आती है और आप उसको क्लिक करते हो और अंदर दिखाई हुई प्रोसेस आप फॉलो करते हो, उसके बाद आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बैंक आपका OTP फोन करके नहीं मांगती है। अगर किसी ने आपका OTP मांगा तो समझ जाइएगा कि ये साइबर फ्रॉड है। तो बच के रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड 1930 ये नंबर याद रखिए। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: हेल्प मी, माय हस्बैंड इज बीटिंग मी।
1: इस टाइप का कॉल आता है पुलिस को और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। आजकल हम देखते हैं कि महिला अत्याचार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है। एंड एक ऐसा ही कॉल आधी रात में पुलिस डिपार्टमेंट के सखी वन स्टॉप सेंटर पे आ चुका था। आधी रात का वक्त था और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया एक लड़की ने जिसको ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, वो बाहर की थी और जैसे तैसे उसने तमिल और इंग्लिश में ये सब बताया और कुछ ही देर में ना तो उस लड़की की मदद करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के महिला पुलिस उसके घर तक पहुंच गए और उसको उसके हस्बैंड से उन्होंने बचा लिया जो कि उसको बहुत पीटता था, बहुत मारता था। और अक्सर कहते ना कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर ये इसका एक अलग एग्जांपल है जो कि महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है अपने शहर, अपने जो पूरे जिले के अंदर, जिसमें 24/7 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सखी काम करती है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1-800-181-181। अब तीन लैंग्वेज में मैंने कहा, याद रखिएगा नंबर। जो भी लड़कियां महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी परेशानी में हो और कोई भी दिक्कत उनको आती हो तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर पर कॉल करके मदद मांग सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगा। बस ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिए 181। और अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक तकरीबन 139 महिलाओं की इन्होंने हेल्प की है इमरजेंसी के वक्त पर, जो कि अत्याचार सहन कर रही थी, जिनको बहुत जरूरत थी, जिनको मेडिकल सर्विस चाहिए थी, इन सभी तरह की हेल्प इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको मिल सकती है। तो सभी महिलाओं ने एक नंबर याद रखना हमेशा 181, जो कि आप सभी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सो थैंक यू पुलिस डिपार्टमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून्ड।

हमें लगता है कि हमारा इंडिया बस पॉपुलेशन के अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, लेकिन नहीं, एक काम ऐसा भी है जहाँ इंडिया दुनिया को एग्जांपल दे रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना इंडिया अपने टोटल प्लास्टिक वेस्ट का ऑलमोस्ट 60% रिसाइकल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे कंट्रीज भी इस नंबर से काफी पीछे है। मतलब जो प्लास्टिक बॉटल आप यूज करके फेंक देते हो उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक दोबारा नया प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, कन्वर्ट होता है। अब गवर्नमेंट भी और स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है कि कंपनीज को बोला गया है कि जितना भी प्लास्टिक मार्केट में भेजोगे उतना रिसाइकलिंग करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है। और एक गुड न्यूज और है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोप्लास्टिक बैग्स को प्रमोट करने के लिए GST भी कम किया गया है, ताकि लोग प्लास्टिक से अच्छा कोई और बैग यूज करें जिससे एनवायरमेंट को खतरा ना हो। अगर अपना इंडिया इतने बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग कर रहा है तो हम भी अपने घर से एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि प्लास्टिक आप कहीं भी मत फेंकिएगा, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजिएगा और उससे कुछ नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस मुहिम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हो। सो अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने इंडिया को प्लास्टिक फ्री और रिसाइकलिंग में सबसे ऊपर ले जा सकते हो। सो ये कदम आप भी उठाइए और बाकी सुनते रहिए।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर.
1: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगेशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

एक बात है भाई, अगर बहुत जोर से सुसू आई तो जाना कहाँ पर, बहुत बड़ा सवाल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। शहर में बहुत जगहों पर सुसू करने की व्यवस्था है, यानी कि क्या मन जाते स्वच्छता ग्रह है, पर स्वच्छता ग्रह स्वच्छ नाही, फक्त ग्रह आहे ते स्वच्छता गाईड दिसत नाहीये। आणि आपल्या कॅनॉट प्लेस मध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी वॉशरूम बनवण्यात आलेले आहेत, पण सध्या ते वॉशरूम बंद असतात म्हणे। मी कालच बघितलं होतं, रात्री गेलतो चक्क वॉशरूमला लॉक होत, तर लोक काय करत होते वॉशरूमच्या बाहेर सुसू करत होते। अब वॉशरूम के बाहर सुसू कर रहे तो डबल गंदगी बढ़ेगी ना। महानगर पालिका ने वॉशरूम बनाया है तो उसको लॉक क्यों लगाना, और एक दिन से नहीं, पिछले 4-5 दिनों से वो लॉक वहां पर वॉशरूम को लगाए हुए है। क्यों लगाए भाई पता ही नहीं किसी को, तो इंसान करे तो करे क्या। अब इंसान ऐसी एक चीज है ना, अगर उसको प्रेशर आया तो जहाँ देखिए वहां पर वो खाली होता है। अब भले वॉशरूम पर लॉक है लेकिन वो वॉशरूम के गेट के ऊपर सुसू कर चला जा रहा है। सिचुएशन हो चुका है कैनॉट के वॉशरूम का, खुले में सुसू मत कीजिए। इतना मैं कहूंगा आपसे, आप फिर वापस मुझे पूछेंगे तो महानगर पालिका को बोलना वॉशरूम ओपन करे। अब भाई इकड़ा तिकड़ विहीर, आता काय म्हणावं जाऊन द्या। स्टे ट्यून।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मेरी एक इच्छा है यार, मुझे भी लोग वीआईपी जैसा ट्रीट करे। अब ये इच्छा मेरी और आपकी भी पूरी हो सकती है। सच्चे कह रहा हूँ, झूठ बिल्कुल मैं कहता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आरजे अदनान, और आपको मैं वीआईपी बनने का एक चांस दे रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं, मेटा आपको वीआईपी बनने का चांस दे सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आपको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फैसिलिटीज, जिसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप वीआईपी हो। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको यूज करने को मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिएटर्स टूल्स, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, फेसबुक पर ऑडियंस इनसाइट्स और व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्टिकर्स और एक्स्ट्रा चैट पिंस के ऑप्शंस, और एआई के शौकीन लोगों के लिए भी स्पेशल प्लान हो सकते हैं जहां एडवांस एआई टूल्स और वीडियो क्रिएशन जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल चैटिंग, रील्स देखना और मीम्स शेयर करना वैसे ही फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया में वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर पॉकेट को थोड़ा प्रीमियम फील करवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप कौन सा प्लान यूज करोगे, फ्री प्लान या फिर सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून।

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजी अदनान आपके साथ है।
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकात तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजी अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी व्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान। अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार मैं, ज्ञानी आदमी हूं, RJADNAN ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही। अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।
2: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा चिकिषा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषय पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सूटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगेशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, Institute, छत्रपति संभाजीनगर.

जिगर फिल्म का ये गाना 30 साल पुराना है। ये गाना बॉम्बे रॉकर्स इस बैंड ने बनाया जो कि यूरोप में शुरू हुआ था पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके। बैंड के सिंगर नवजोत सिंह जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनकी मुलाकात हुई म्यूजिशियन थॉमस से। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने बैंड का पहला एल्बम रिलीज किया। देश विदेश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले गाने से।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। शो के स्टार्टिंग में ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: और इसमें मैंने आपको एक पहेली पूछा था कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए, बताइए ये क्या चीज है। और इसका जवाब है पटाखे। जी हाँ, पटाखे। जब हम इनको जलाते हैं ये फूट फूट कर रोने लगते यानी कि बजने लगते हैं और हम खुश हो जाते हैं और फिर ये खत्म होने के बाद मुरझा भी जाते हैं ना। सो एकदम सही जवाब दिया है प्रेम काय ने। सो कांग्रेचुलेशन प्रेम भाई, बड़े ही प्रेम से आपने इस प्रेम वाली पहेली का जवाब दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल जवाब। सो दोस्तों ऐसे ही मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए और सुनते रहिए।
1: ऑल इज वेल
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness live radio ka flow. On MTM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है ऑन MTM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है। मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: लड़ा।
1: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।
2: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे? मग तयार व्हा चिकित्सा नाट्य महोत्सव 2000

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमांची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण. सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे.
1: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते है जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए एमजीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. एमजीएम यूनिवर्सिटी इन सिक्रेट को छत्रपति संभाजीनगर.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचाय, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमांची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।
1: हर दिल की आवाज बने,
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: एमजीएम 90.8 एफएम सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
1: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा और अब शाम का ये खुशनुमा समय आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद शाम का समय खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का होता है। एक कप चाय, अपने पसंदीदा गानों का साथ और कुछ प्यारे गाने, बस यही तो चाहिए एक परफेक्ट इवनिंग के लिए। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खास बना है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले कुछ पलों में हम लेकर आ रहे हैं ऐसे गाने जो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएंगे और आपके मूड को बना देंगे और भी ज्यादा फ्रेश। अगर आप अभी सफर में हैं, ऑफिस से घर लौट रहे हैं या फिर घर पर आराम कर रहे हैं तो बस म्यूजिक का मजा लीजिए और सारी टेंशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। याद रखिए जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही बड़े मायने रखती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हैप्पी इवनिंग। अब वक्त हो गया है आने वाले शानदार गानों का आनंद लीजिए। मैं फिर लौटूंगी कुछ ही मिनटों के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए एमजी मराठी पॉइंटेड फिल्म्स, साथ है तो बात है।
1: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए एमजी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और आल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। Admission open for 2026-27. For more information, call on 7620322186 or 7017008546. MGM University, NCT, Kochitrapati, Sambhaji Nagar.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.
4: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज एक छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत बात करते हैं। क्या आपने कभी यूनिवर्स से बात की है? सुनने में थोड़ा अलग लगता है लेकिन सच कहे तो ये एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है। जब हम अपने दिल की बातें, अपने सपने, अपनी परेशानियां या अपनी खुशियां यूनिवर्स से शेयर करते हैं तो हमें अंदर से हल्का महसूस होता है। कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझ नहीं रहा। ऐसे समय में बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और अपने मन की बात यूनिवर्स से कहिए। ये किसी नियम या तरीके से नहीं होता। जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं वैसे ही अपने दिल की बात कह दीजिए। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले लेकिन ऐसा करने से पॉजिटिव सोच बढ़ती है, मन शांत होता है और हमें अपने गोल्स पर फोकस करने की ताकत मिलती है। जब हम अच्छी बातें सोचते हैं और अपनी इच्छाओं को साफ शब्दों में कहते हैं तो हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी होता है। तो आज की इस खूबसूरत शाम में एक छोटी सी आदत अपनाइए, अपने सपनों को यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए, यू नो पॉजिटिव ऊर्जा भेजिए और फिर क्या, विश्वास रखिए और अच्छी चीजें आपके रास्ते में जरूर आएगी। इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं आगे कुछ शानदार गानों की ओर। तब तक आप लोग कहीं मत जाना, बस सुनते रहना MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज बात करते हैं कैसे एक फल की जो स्वाद में भी कमाल है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, मैं बात कर रही हूँ अनार की। कहते हैं कि रोज एक अनार खाने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। अनार में भरपूर मात्रा में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अनार खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये खून को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो अपनी डाइट में अनार को जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा अनार दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही इसकी अच्छी मात्रा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात, अनार को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। सीधे दाने खाइए, जूस पीजिए या फिर फ्रूट सलाद में मिलाकर खाइए। इस तरीके से इसका स्वाद और फायदा दोनों भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी हेल्दी आदत जोड़ना चाहते हैं तो अनार को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। इसी हेल्दी और पॉजिटिव सोच के साथ अब बढ़ते हैं कुछ आगे, सुनते हैं अमेजिंग गाने ओनली ऑन MG 94.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब वक्त है एक ऐसे गाने की बात करने का जिसने लाखों दिलों को छुआ है। अब मैं बात कर रही हूं कल होना हो इस गाने की। इस गाने का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। हम अक्सर बीते हुए कल की चिंता करते हैं या आने वाले कल की फिक्र में आज की खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन ये गाना हमें याद दिलाता है कि जो पल हमारे पास अभी है वही सबसे खास है। कभी कभी जिंदगी बहुत तेज भागती हुई लगती है, काम जिम्मेदारियां और छोटी बड़ी परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में ये गाना जैसे धीरे से कहता है कि थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को महसूस कीजिए। अपने परिवार के साथ बिताया समय, दोस्तों की हंसी, किसी अपने की एक प्यारी सी बात और फिर शाम की एक सुकून भरी चाय, यही तो जिंदगी की असली खुशियां है। तो दोस्तों, अगर आज आपके चेहरे पर मुस्कान है तो उसे और बड़ा कर लीजिए। अगर कोई सपना है तो उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। और अगर किसी अपने से बात किए हुए काफी समय हो गया है तो आज ही उन्हें एक कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है और हर पल बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए बढ़ते हैं शो में आगे और सुनते हैं एक ऐसा ही इंस्पायरिंग और दिल से जुड़ा हुआ गाना। पेश है कल होना हो, ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। और आज लेकर आई हूँ मैं इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। जब हम साड़ी की बात करते हैं तो आमतौर पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट की तस्वीर अपने आप ही हमारे मन में आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट पहनने की जो आधुनिक शैली आज इतनी आम है वो हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। पुराने समय में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएँ साड़ी को कई अलग अलग तरीकों से पहनती थी। कई जगहों पर ब्लाउज और पेटीकोट का इस्तेमाल आज की तरह नहीं होता था। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रभाव और बदलते सामाजिक माहौल के साथ साड़ी पहनने के तरीके में भी बदलाव आने लगे। धीरे धीरे ब्लाउज और पेटीकोट का चलन बढ़ा और फिर ये साड़ी पहनने का एक आम हिस्सा बन गया। समय के साथ भारतीय महिलाओं ने भी इस शैली को अपने तरीके से अपनाया और इसमें कई खूबसूरत बदलाव किए। आज तो ब्लाउज की अनगिनत डिजाइन और स्टाइल देखने को मिलती है जो भारतीय फैशन की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, यही तो इतिहास की खूबसूरती है। समय के साथ परंपराएं बदलती है, नए रंग जुड़ते हैं और पुरानी चीजें नए रूप में हमारे सामने आती है। तो अगली बार जब आप साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट देखें तो इस दिलचस्प इतिहास को जरूर याद कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट छत्रपति संभाजी नगर.
1: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सूटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: पता नहीं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजू मनीषा। आपके साथ बात करते हैं महात्मा गांधी जी और खादी के खास रिश्ते की। आपने अक्सर गांधी जी की तस्वीरों में उन्हें खादी के कपड़े पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी खादी को इतना महत्व क्यों देते थे? दरअसल उस समय भारत में विदेशी कपड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। गांधी जी मानते थे कि अगर लोग अपने देश में बने कपड़े पहनेंगे तो देश के बुनकरों और कारीगरों को काम मिलेगा, इससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। गांधी जी के लिए खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था बल्कि स्वाभिमान और स्वदेशी की पहचान थी। वो चाहते थे कि हर भारतीय अपने देश में बनी चीजों को अपनाए और स्थानीय लोगों का समर्थन करे। खादी की एक और खास बात है कि ये आरामदायक होती है। गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हल्की गर्माहट देने की इसकी खासियत इसे और भी खास बनाती है। आज भले ही फैशन के नए ट्रेंड बन गए हो, लेकिन खादी की पहचान आज भी बनी हुई है। ये हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने आत्मनिर्भरता की भावना की याद दिलाती है। दोस्तों, गांधी जी का खादी के प्रति समर्थन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, इसके पीछे देश के लोगों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत का सपना छिपा हुआ था। इस इंस्पायरिंग सोच के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: जतन आराम ना है, कोई हकीमी काम ना है, तेरी सुध में जब ना

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिस और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। तो यार आज बात करते हैं एक छोटी सी आदत की जो हमारे पैसे भी बचा सकती है और पर्यावरण की भी मदद कर सकती है। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई कपड़ा कुछ बार पहनते हैं और फिर उसे अलमारी के किसी कोने में रख देते हैं या कभी कभी सीधे फेंक भी देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करके हम उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं? अगर कोई टी शर्ट या कुर्ता पुराना हो गया है तो उसे घर में आराम से पहन सकते हैं, पुरानी जींस से बैग बनाया जा सकता है, पुराने दुपट्टे से कुशन कवर या कोई खूबसूरत क्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी से पुरानी चीज़ें फिर से नई लगने लगती है। और अगर आपके कपड़े अच्छी हालत में हैं लेकिन आप उन्हें नहीं पहनते तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। इसके लिए जो कपड़ा पुराना है वो किसी और के लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। हर साल लाखों टन कपड़े कचरे में चले जाते हैं। अगर हम कपड़ों को थोड़ा ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करें, रिपेयर करें या रीयूज़ करें तो हम पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई पुराना कपड़ा देखें तो उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए, शायद वो किसी नए काम में आ जाए, किसी की मदद कर दे या फिर आपके घर की किसी खूबसूरत चीज का हिस्सा बना दिया जाए। यार इसी अमेजिंग सोच के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM साथ है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब वो समय आ गया है जब आपसे मुझे कहना पड़ेगा अलविदा। आज के इस खूबसूरत हैप्पी इवनिंग में आपने हमारा साथ दिया, हमारी बातों को सुना, बेहतरीन गानों का आनंद लिया, इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की ये शाम आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई होगी, आपके दिन की थकान थोड़ी कम की होगी और कुछ अच्छी बातें आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती, एक प्यारी सी मुस्कान, अपनों का साथ और सकारात्मक सोच ही काफी होती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर दिन को पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए। अगर आज का शो आपको पसंद आया हो तो कल फिर इसी समय हमारा साथ जरूर दीजिएगा। हम फिर लेकर आएंगे नई बातें, नई जानकारियां और आपके पसंदीदा गाने। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, शाम को खूबसूरत यादों में बदल दीजिए और आने वाले कल का स्वागत मुस्कुरा कर कीजिए। फिलहाल मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। स्टे ट्यून्ड टू एमजी मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

देश में उनके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं उनके गाने फीके पड़ने लग गए, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई है। फिर धुरंधर फिल्म के जरिए उन्हें एक ऐसा चांस मिला फिर से कमबैक करने का उनके पहले गाने

0: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026. नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी. या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग. मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.
1: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए एमजीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और आल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. एमजीएम यूनिवर्सिटी, एनसी छत्रपति संभाजीनगर.

एक ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है. एंड वो कॉन्टेक्ट नंबर पुलिस का नहीं है भाई. देखो, पुलिस का कॉन्टेक्ट नंबर हम सभी को पता है क्या है. एक और कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपको याद रखना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि फिलहाल क्राइम करने का तरीका थोड़ा बदल चुका है और नया क्राइम सामने आया है. दैट्स कॉल्ड साइबर क्राइम. एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 से लेकर मई 2026 तक अपने पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और इसमें से 2,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है जिन्होंने साइबर फ्रॉड किया है, साइबर क्राइम किया है. ऐसे केसेस ना आज अपने शहर में भी बहुत सारे जगह पर हो रहे. किसी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया, किसी के साथ 4 लाख का फ्रॉड हो गया, किसी का पूरा डेटा गायब हो गया, तो किसी का कंप्यूटर या अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका है. अगर ऐसे कुछ चीजें आपके साथ हो रही हो, ऑनलाइन अरेस्ट कर रहा हो या ऑनलाइन धमकी दे रहा हो, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो 1930 इस कॉन्टेक्ट नंबर पर. ये है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर. इस पर आप कॉल करके हेल्प मांग सकते हो और आपकी कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो. नंबर याद रखिएगा 1930, 19 और 30, सिंपल तरीके का नंबर है, याद रखिए. इसी के साथ अगर कोई कंप्लेंट आपको दर्ज करना है तो आप विजिट कर सकते हो www.cybercrime.government.in इस वेबसाइट पर. और साइबर पुलिस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें. सबसे ज्यादा केसेस इसी वजह से होते हैं, एक लिंक आपके मोबाइल पर आती है और आप उसको क्लिक करते हो और अंदर दिखाई हुई प्रोसेस आप फॉलो करते हो, उसके बाद आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बैंक आपका OTP फोन करके नहीं मांगती है. अगर किसी ने आपका OTP मांगा तो समझ जाइएगा कि ये साइबर फ्रॉड है. तो बच के रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. एंड 1930 ये नंबर याद रखिए. बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

हेल्प मी, माई हस्बैंड इज बीटिंग मी। इस टाइप का कॉल आता है पुलिस को और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। आजकल हम देखते हैं कि महिला अत्याचार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है। एंड एक ऐसा ही कॉल आधी रात में पुलिस डिपार्टमेंट के सखी वन स्टॉप सेंटर पे आ चुका था। आधी रात का वक्त था और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया एक लड़की ने जिसको ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, वो बाहर की थी और जैसे तैसे उसने तमिल और इंग्लिश में ये सब बताया और कुछ ही देर में ना तो उस लड़की की मदद करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के महिला पुलिस उसके घर तक पहुंच गए और उसको उसके हस्बैंड से उन्होंने बचा लिया जो कि उसको बहुत पीटता था, बहुत मारता था। और अक्सर कहते हैं ना कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर ये इसका एक अलग एग्जांपल है जो कि महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है अपने शहर या अपने पूरे जिले के अंदर, जिसमें 24/7 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सखी काम करती है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 181-181-181। तीन लैंग्वेज में मैंने कहा, याद रखिएगा नंबर। जो भी लड़कियां महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी परेशानी में हो और कोई भी दिक्कत उनको आती हो तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर पर कॉल करके मदद मांग सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगा। बस ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिए 181। और अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक तकरीबन 139 महिलाओं की इन्होंने हेल्प की है इमरजेंसी के वक्त पर, जो कि अत्याचार सहन कर रही थी, जिनको बहुत जरूरत थी, जिनको मेडिकल सर्विस चाहिए थी, इन सभी तरह की हेल्प इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको मिल सकती है। तो सभी महिलाओं ने एक नंबर याद रखना हमेशा 181, जो कि आप सभी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सो थैंक यू पुलिस डिपार्टमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून्ड।

हमें लगता है कि हमारा इंडिया बस पॉपुलेशन के अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, लेकिन नहीं, एक काम ऐसा भी है जहाँ इंडिया दुनिया को एग्जांपल दे रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम। जी हाँ, एक रिपोर्ट का अकॉर्डिंग ना इंडिया अपने टोटल प्लास्टिक वेस्ट का ऑलमोस्ट 60% रिसाइकल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे कंट्रीज भी इस नंबर से काफी पीछे है। मतलब जो प्लास्टिक बॉटल आप यूज करके फेंक देते हो उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक दोबारा नया प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, कन्वर्ट होता है। अब गवर्नमेंट भी और स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है कि कंपनीज को बोला गया है कि जितना भी प्लास्टिक मार्केट में भेजोगे उतना रिसाइकलिंग करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरत है। और एक गुड न्यूज और है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोप्लास्टिक बैग्स को प्रमोट करने के लिए जीएसटी भी कम किया गया है ताकि लोग प्लास्टिक से अच्छा कोई और बैग यूज करें जिससे एनवायरमेंट को खतरा ना हो। अगर अपना इंडिया इतने बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग कर रहा है तो हम भी अपने घर से एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि प्लास्टिक आप कहीं भी मत फेंकिएगा, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजिएगा और उससे कुछ नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस मुहिम के अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हो। सो अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने इंडिया को प्लास्टिक फ्री और रिसाइकलिंग में सबसे ऊपर ले जा सकते हो। सो ये कदम आप भी उठाइए और बाकी सुनते रहिए।

0: एक बात है भाई, अगर बहुत जोर से सुसु आई तो जाना कहाँ पर, बहुत बड़ा सवाल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RG अदनान आपके साथ है। शहर में बहुत जगहों पर सुसु करने की व्यवस्था है, यानी कि क्या मानते स्वच्छता ग्रह है, पर स्वच्छता ग्रह स्वच्छ नाही, फक्त ग्रह है ते स्वच्छता गाईड दिसत नाही आहे। आणि आपल्या कॅनॉट प्लेस मध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी वॉशरूम बनवण्यात आलेले आहेत, पण सध्या ते वॉशरूम बंद असतात म्हणे। मी कालच बघितलं होतं, रात्री गेलतो, चक्क वॉशरूमला लॉक होतं, तर लोक काय करत होते, वॉशरूमच्या बाहेर सुसू करत होते। अब वॉशरूम के बाहेर सुसू कर रहे तो डबल गंदगी बढेगी ना। महानगर पालिका ने वॉशरूम बनाया है तो उसको लॉक क्यों लगाना, और एक दिन से नहीं, पिछले 4-5 दिनों से वो लॉक वहां पर वॉशरूम को लगाए हुए है। क्यों लगाए भाई, पता ही नहीं किसी को, तो इंसान करे तो करे क्या। अब इंसान ऐसी एक चीज है ना, अगर उसको प्रेशर आया तो जहाँ देखिए वहां पर वो खाली होता है। अब भले वॉशरूम पर लॉक है, लेकिन वो वॉशरूम के गेट के ऊपर सुसू कर चला जा रहा है। सिचुएशन हो चुका है कैनॉट के वॉशरूम्स का, खुले में सुसु मत कीजिए। इतना मैं कहूंगा आपसे, आप फिर वापस मुझे पूछेंगे तो महानगर पालिका को बोलना वॉशरूम ओपन करे। अब भाई इकड़ा आड़ तिकड़ विहीर, आता काय मनाव जाऊन द्या। स्टे ट्यून्ड।
1: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017088546। MGM University, NC3, छत्रपति संभाजीनगर।

मेरी एक इच्छा है यार, मुझे भी लोग वीआईपी जैसा ट्रीट करे। अब ये इच्छा मेरी और आपकी भी पूरी हो सकती है। सच्चे गौरव, झूठ बिल्कुल मैं कहता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आरजे अदनान, और आपको मैं वीआईपी बनने का एक चांस दे रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं, मेटा आपको वीआईपी बनने का चांस दे सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आपको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलने वाले बहुत सारे फैसिलिटीज, जिसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप वीआईपी हो। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको यूज करने मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिएटर्स टूल्स, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, फेसबुक पर ऑडियंस इनसाइट्स और व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्टिकर्स और एक्स्ट्रा चैट पिंस के ऑप्शंस, और एआई के शौकीन लोगों के लिए भी स्पेशल प्लान हो सकते हैं जहां एडवांस एआई टूल्स और वीडियो क्रिएशन जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल चैटिंग, रील्स देखना और मीम्स शेयर करना वैसे ही फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया में वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर पॉकेट को थोड़ा प्रीमियम फील करवाना पड़ेगा। दोस्तों, आप कौन सा प्लान यूज करोगे, फ्री प्लान या फिर सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।